दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण कहता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे।

परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संग जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहिब सुख सागर विखे शाम दे दीवाना विच आप संगतां गुरु चरणां दी हाजरी भर के अपने जीवन दे पलां नूं सफला बना रहे हो। आप सब संगतां नूं समूह सेवादारां वल्लों जी आया, आओ प्यार सहित सतगुरां दे पावन चरणां नाल जुड़ करके पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करदे हां। भाई गुरनाम सिंह जी रुद्रपुर वाले अते उन्हां दे रागी जथे पासों सतगुरां दी कृपा दा सदका गुरु घर विखे आप संगतां दे सहयोग दे नाल जो प्रोग्राम उलीके जांदे हन तिन्हां दे तहत साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जीआं दे पावन प्रकाश पुरब नूं मुख रखदिआं होइआं 17 अते 18 अक्तूबर दे शाम दे दीवाना विच विशेष तौर ते बाल राग कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है, जिस दे विच साध संगत जी जो वख वख स्कूलां तों जो बच्चियां दीआं टीमां हन वो आप संगतां दे सन्मुख कीर्तन प्रस्तुत करके गुरु रामदास महाराज जी की कीर्ति नूं गायन करनगे। आप संगतां नूं बेनती है कि वध तों वध संगतां गुरु चरणां विच पहुँच करके आप जीआं ने लाहे प्राप्त करने जी, अते हर साल दी तरह गुरद्वारा साहिब विखे गुरबाणी कंठ मुकाबला जो 24 अक्तूबर नूं हो रहा है साध संगत जी तस दे विच अपने बच्चियां दे नाम रजिस्टर करवाओ तां जो बच्चे इस गुरबाणी कंठ मुकाबले विच भाग लै सकन। आप संगतां भी वध तों वध गुरु चरणां विच पहुँच करके सतगुरु जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां तन मन धन दे नाल सेवावां करके गुरु जी दीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ बड़े अदब प्यार सत्कार सहित पावन बाणी दे शब्द कीर्तन दे नाल जुड़दे हाँ। कीर्तन सरवण करा रहे हन भाई गुरनाम सिंह जी रुद्रपुर वाले अते उन्हां दा रागी जथा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सरबार होय अखरी ना करी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी।

सर्वपासीय हैं, सर्वनाशीय हैं, करुणाकर हैं, विश्वम्बर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदेश्वर हैं, ब्रह्मंड सा कलखंड सा परते पर हैं, करुणाकर हैं, आजपा जाप हैं, अथपा थप हैं, आकृता कृत हैं, मृता मृत हैं,

जुगत ना जाने छड़ बए घर बार, सब को पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए। ता नानक तोड़िया दा पे मंगला पहला।

कमावै। सुख ना कब हूँ पायाओ, बहुते पे करे भेख तारी, बिन सबदे होमै किने ना मारी। जीवत मरै ता मुकत पाए, सचे नाए समायाओ, अज्ञान तृष्णा एसौ तन है जलाए। तिस दी बूजै जे गुर शब्द कमाए, तन मन शीतल क्रोध निवारै, होमे मार समायाओ, सच

पछाण हो। भिक्षे कमलाव किरण परंगासाए प्रगट कर देखाया। आपे करता सचा सोई आपे मार जी वाले अवरना कोई। नानक नाम मिले बड़े आई आप गवाए सुख पाया। मारू सोहला महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सचा आप सवार नहारा अवरना सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसा घाट अंतरा सहजे सच समाई है। सबना सच वसा मन माही गुरप्रसादी सहज समाही। गुर गुर करता सदा सुख पाया गुरचरणी चित लाई है। सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा सतगुर सेवी अवर ना दूजा।

एक वस्तु को पहुँच न साके। तन रति फूक प्यासाय, तन कर बिनो दो कर जोरै। प्रयाव प्रदेश न जाओ वसो कर मोरे, ऐसा बन जाओ करो गृह पीतर। जित उतरे फूक प्यासाय, सगले कर्म धर्म जुग सादा। बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। पई कृपा नानक सत संगे, तौ तन फिर आनंद उलासाए। तन अंधी पेराव चपल सियाना, पंच तत का रचन रचाना। जिस वखर कौ तुम आए, हो सो पायो सतगुरु पासाए। तन कहे तू वस मैं नल, प्रया सुख वासी बाल गोपाल। तुझे बिना हो कित ही ना लेके, वचन दे छोड़ ना जासाए। फिर कहा हो हुक्मी बंदा, हो भारो ठाकुर जिस कान ना छंदा। जिच राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे तां ऊठ सिधासा है। जाओ प्रया बचन कहे तन साचे, तन कसू न समझा चंचल काचे।

जति सति सुखवासी एक दतार सगल है जाचक देह दान सृष्टि जाहे कर है भगत अरंग अपार खिन में थाप ओथा पणहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मानाउ भगति जाहे जिस देह दर्शा सोई तुद जाने ओह गुर के शब्द सदा रंग माने चतर स्वरूप सयाना सोई जो मन तेरे पावी जाहे जिस चीत आवै सो वे प्रवाह जिस चीत आवै सो सचा सहा जिस चीत आवै तिस पाओ केहा अवर कहाऊ किस की जाहे तृष्णा बूजी अंतर ठंडा गुरपुरे लै टूटा गंडा सुरत शब्द हृदयंतर जागी अम्यों चोल चुल पी जाहे मरे नाही साध साध ही जीवे अमर प्या अबनासी।

देहो दरस जित मन तृपतासा हर कीर्तन मानव ठहराएंदा रूड़ो ठाकुर आओ किता वस न आवै हर सो किस करे जे हर क्या संतां पहवै कीता लोड़न सोई कराएन दरफे न कोई पाएंदा जिथे आओ घट आए बनत है प्राणी तिथे हर त्याये सारंग पाणी जिथे पुत्र आओ कलत्र न बेली कोई तिथे हर आप छडाएंदा वड्डा साहब अगम्य था क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह काट सिलक जिस

सिर पूजस बगुल समाधं मुख झूठ विपुखन सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गाल माला तिलक ललाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै नेह फलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस्य गुरप्रसादित रह के

काच कोटंग रचांत तोयंग लेपनंग रक्त चर्मण है नवांत द्वारंग पीत रहतंग बाय रूपंग स्तंभन है गोविंद नामं नह सिमरंत अज्ञानी जानत अस्थिरंग दुर्लभ देह उदरंत साध सरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुबंत तोयंग अच्युत गुणज्ञं पूर्णंग बहलो कृपाला गंभीरंग ऊंचाय सर्वज्ञ पारा प्रत्या प्रयंग विश्राम चरणंग नाथ नाथे नानक शरणं मृगी पेखांत बद्धे क प्रहारेण लख आवद है अहो जस्य रखेण गोपाल है नानक रोम न छेद्यते बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिस है बिखम थान बसंत उच्च है नह सिमरंत मरण कदांच है होवंत आज्ञा भगवान पुरख है नानक कीटी सास करखते शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्ट तोयं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत रव सस्यर नक्षत्र गगनं कटांत वसुदा गिर तर सिखंडं कटांत ललना सोत प्रात हितं कटांत कनिक मानिक माया स्वरूपं नह कटांत केवल गोपाल अच्युत अस्थिरंग नानक साध जाना नह बिलंब तरमं बिलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत सुलोभं शरण संतं किलबिखनासं प्राप्तं धर्म लक्षणा नानक जेहे सो प्रसन्न माधव है मृत मोहं अल्प बुद्ध्यंग रचांत बनता विनोद साहं जौबन बहिक्रम कनक कुंडल है बचेत्र मंदिर सोभंत बसरा इत्यंत माया व्यापितं हे अच्युत शरण संत नानक पो भगवान नव है जन्मंग तमरणं हरखंग तसोगंग पोगंग तरोगंग ऊचंग तनीचंग नाना समूचंग राजंग तमानंग अभिमानंग तहीनं प्रवृत्त मार्गंग मरतंत विनाशनं गोविंद भजन सार संगेण स्थिरं नानक भगवंत भजन आसनं कृपांत हरियं मत तत ज्ञानं बिगसीद बुद्धा कुशल थानं बस्यंत रिख्यं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं अरहंत जन्मं हर दर्श लीणा बाजंत नानक शब्द बीणा कहांत बेदा गुणंत गुनिया सुणंत बाला बहुविध प्रकारा दृढ़ांत सुविद्या।

माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुर कह, नानक सर्व जीव प्रतिपाल कह। अनित्य वित्तं अनित्य चिंतं चित्तं अनित्य आशा बहुविद प्रकारं, अनित्य हेतं अहं बंधं परम माया मलनं विकारं। फिरंत जो ननिक जठरागन, नह सिमरंत मलीन बुद्ध्यं। हे गोविंद करत मया, नानक पतित उदारण सार संगम है।

अनंत मरण है। अनेक साधन न सिद्ध्यते नानक असंभंग स्तंभंग स्तंभंग शब्द साध स्वजन है। कोर दुख्यंग अनिखत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविख्यादंग मिटांत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ भस्म करोत। अंधकार सिमरत प्रकाशंग गुण रमंत अग खंडन है। रिद बसंत पै पीत दूता है कर्म करत महानिर्मल है। जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है। शरण जोगंग संत पय नानक सो भगवान खेमं करोत। पाचं करोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है।

तरण महा नानक महासागर पह दुत्र है। सहर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर है। आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है। सर्व रख्या गुरदयाल है भय दुख बेनासन है। भगत वच्छल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख चित्त है। जेन कला तारियो आकाशं वै संतरं काष्ठ बेष्टं जेन कला सास सूर नक्षत्र ज्योत्यं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह छे जंत जठर रोगण है। तेन कला अस्थंभं सरोवरं नानक नह छे जंत तरंग तोयण है। गोसाई गृहस्थ रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन है। लब्ध्यं सार संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन है। मस्कं पगनंत सैलं करदमं तरंत पपील कह सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कह। सार संगेण सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। तिलकहीणं जथा विप्रा अमरहीणं जथा राजन है। आबदहीणं जथा

ऊच मूच पार गोविंद है। बसंत साज रिद्यंग अचुत बुझंत नानक बड भागी है। उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी सुआन स्याल खर है। बेखम स्थान मन मोह मदिरंग महा असाध पंच तस्कर है।

तृणं तमेरं सहकं तहरियं बूढ़ं ततरियं ऊणं तपरियं अंधकार कोट सुर उजारं बिनवंत नानक हर गुरदयारं। ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरत्नं संसार गहं ते नर नानक निःफल है। परम दर पर दर्भ हिरणं भव विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जीय कह।

सब ते हम बुरे हम ताज भलो सब कोए जैन ऐसा कर बुझया मीत हमारा सोए कबीर आई मुझे पह अनेक करे कर पेश हम राखे गुर अपने।

ओठ तावते से जान मारे भगवंत। कबीर जंदन का बिरवा भला, बेड़े उठाक भला, सो ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास।

छूट सह फिर कर संबंध संभाल कबीर संबंध ना छोड़िया जौत खारो होए ओखर पोखर टूटते भरो ना कहे है कोए कबीर ने गुसाए बह गए थांगी नाही कोए दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए कबीर बैसरों की कुकर पले साकत की बुरी माए ओह नित सुनहर नाम जास ओह पाप सहन जाए।

कर कहलिया आप भी साए पी साए तैसे बात न पूछिए कभो न लाई पाए कबीर जह दर आवत जाते हो हटके नाही कोय सो दर कैसे छूटिया जो दर ऐसा होए कबीर डूबा था पै उबरियो गौन की लहर चबक जह देखियो बेड़ जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उत्तर परियो हाओ फर्क कबीर पापी भक्त ना पावई हर पूजा ना सुहाए माखी चंदन पर हर जह बिगंध तह जाए कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नामू

कूका कबीर सती पुकारा कह चढ़े सुन हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम कावन निदान निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दहद सजाए जो जैसी संगत मिले सोता सो फल खाए।